0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और

0: स्तर शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत कुल 80 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें पंजाबी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी के लिए 40-40 सीटें निर्धारित की गई हैं। जागरण सिटी बठिंडा से एलडीसी नीति के विरोध में बार एसोसिएशन ने निकाला रोष मार्च। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने संघर्ष तेज करने का लिया फैसला। जिला बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित जनरल हाउस की बैठक में एलडीसी नीति को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। 96% वाटरों के फार्म SIR फार्म डिजिटाइज किए गए। ऐसी साड़िया अज दियां अखबारी सुर्खियां। प्रोग्राम सजरी सवेर तहत मैं सी तुहाडे नाल कुलजीत चहल।
1: इस दे नाल ही तुहानू हुण जान कुछ संदेशां दे नाल
2: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ। ਆ ਗਈ ਤਨਖਾਹ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੁੰਮਕੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਤ ਪਹਿਲਾ ਚੁੰਮਕੇ। ਸੁਣੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜਾ ਬਚਾਓ, ਥੋੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਪਰ ਚੁੰਮਕਿਆ ਦਾ ਕੀ? ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਟੀਕਾ?
3: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
2: ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾਰੀ।
4: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
4: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
4: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
6: ਕੁਝ ਜੋੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਈਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ।

प्रोग्राम दी होस्ट रहूंगी मैं यानी के ममता अरोड़ा। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना सिलसिला रब ने बनाईया जोड़िया। मिति 30 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 12:30 बजे। एक खास मुलाकात एक प्रेरणादायक सफर सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।

सुनना ना भुलना दोस्तों, मिति 29 जुलाई 2026 शाम 5:30 बजे दिन होवेगा बुधवार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ।
1: सब्जियों के 2000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
7: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के

0: आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी।

0: इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ते ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़

0: देखी समागमां दी लड़ी माघी दी पूर्णमासी ते संत रविदास जी दे जन्म दिवस दे मौके ते 20 फरवरी 2027 तक जारी रहेगी। भाजपा दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश दे कैबिनेट मंत्री ते होर प्रमुख आगुआं दे समागम विच शामिल होण दी उम्मीद है। डेरा सचखंड बलना दे मुखी भी देश भर दे कई प्रमुख संतां दे नाल मौजूद रहणगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नूं बंद करने का ऐलान किया है। SBI के साबका मुख्य जनरल मैनेजर गिरी कुमार नायर नूं अधिकारत लिक्विडेटर नियुक्त किया है। RBI ने कहा है कि यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के बैंकिंग नेमबद्दी कानून 1949 ते कंपनी कानून 2013 तहत बैंक नूं बंद करने की आग्ञा देने के आदेश तों बाद लिया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस योजना का उद्देश औरतों नूं आर्थिक तौर ते मजबूत बनाउणा ते उन्हां नूं समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। खेडां विच ग्लासगो विच चल रहीआं 2026 राष्ट्रमंडल खेडां विच कुलवीर सिंह ने मर्दां दी 10,000 मीटर दौड़ विच चांदी दा तमगा जित के इतिहास रचिआ है। इस मुकाबले विच तमगा जित्तण वाले पहले भारतीय अथलीट बन गए ने। आस्ट्रेलिया दे काई रोबिनसन तो बाद दूजे स्थान ते रहे। हरजिंदर कौर ने औरतां दे 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्तिया। आकाशवाणी नाल अपनी खुशी जाहिर करदे उन्हें कहा,
1: मैं बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हूँ। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी 6 की 6 लिफ्ट पास की है और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा।
0: चल रही ग्लासगो खेडां विच भारत के कुल तमगियां की गिनती 12 हो गई है, जिस विच 2 सोने ते 7 चांदी दे ते 3 कांसी दे तमगे शामिल ने। आखिर च खास खबर एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास स्थान ते सरकार दे सकत्तरां नाल दूजी उच्च पदरी मीटिंग की थी। लोकसभा विच जनतक प्रीख्यावां च अनुचित साधना दी वरतों की रोकथाम बारे सोध बिल 2026 ते चर्चा मुड़ शुरू होगी। पाकिस्तान दे कब्जे हेठले जम्मू कश्मीर च पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई विच पिछले 2 दिनां च मरण वाले की गिनती 30 हो गई है। अज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है ते राष्ट्रमंडल खेडां विच कुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्तण वाले पहले भारतीय अथलीट बने ते हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग विच चांदी दा तमगा अपने नां कीता है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 तक होएगा। नमस्कार।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ 8:40 ਤੇ 28 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਜੀਤ ਚਹਿਲ। ਅੱਜ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ।
3: ਮੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੌਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੁਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੂਰੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੂਠੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਖਰ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੀ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ, ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲਣ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੋਭੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੀ ਕੌਲਾਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਚਨਾ ਪੱਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
4: ਪਾਉਣ ਖੈਰ

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
0: विविध भारती से चित्र लोगों को रब गूंज रही है। शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब अंकित तिवारी की आवाज। फिल्म का नाम है एक विलन।

सुबह के 9:24 हुए हैं। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारती के संग हैं और शान की आवाज गूंज रही है जो किसी के मुस्कुराने की बातें कर रहे हैं।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। किसने कहा है? एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

आज के फनकार हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे, दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए।

जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग हंस

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: हो गुजारा की जरूर लूं बाजा मुझे कह रहे मत मारा का जरूर पापा
1: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मस्तराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

सन फौज है मेरे घर की, अरे साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन के लिए

0: हाथ नहीं है डर के, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में

0: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दहिया का याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है,
2: दुखता उखता नहीं, कस मसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ ये तो नवा रोग लगत है, सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करू ना हमारा।
1: ठहरो पहले ये बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
2: कैसे। ऐसे
1: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना हो तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा,
1: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे,
1: इधर घूमो करवट,
2: फल्ले नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
1: गोबर गणेश कहीं की।
0: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी,
3: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता।
1: उधर मैं टेलीफोन देता था, तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा लो और बेडरूम में भी।
3: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
1: छोकरी चूंकि टेलीफोन छोकरी का हाथ में था।
3: यस
1: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहे को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग जो बात तुम्हारे हाथ में है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका

0: कल पैसे नहीं भेजता है?
1: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
2: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
3: जाएगा। राइट राइट।
2: मैं सूजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
1: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
0: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
2: यू शट अप। सूजन तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला?
0: मैं बोला कि तुम सिस्टर लोग कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
2: हम जानते तुम इधर ही रहेगा।
4: सन 1952 में जाल।
3: क्या मुसीबत है, लोग रोमांस का भी चांस नहीं देते हैं।
2: अजीब बात नहीं है, ये कोई रोमांस करने का जगह है? यहाँ तो लोग आएगा ही। चलो किधर घूमने को चले, गाड़ी नीचे उतारो।
3: नीचे उतारने के लिए थोड़ी ऊपर चलाया है।
2: फिर
3: इसलिए कि जब तक तुम ये नहीं बताएगा कि तुम हमसे शादी कब बनाएगा, गाड़ी नीचे नहीं जाएगा।
2: ओफो, तुम्हारा खोपड़ी को सर्विस करना पड़ेगा। अरे बाबा, जब तक तुम अंकल से बात नहीं करेगा तो शादी कैसा होगा?
3: अंकल, ओ नो, हम उससे बहुत डरता है, वो तो हमारा होल बॉडी का सर्विसिंग कर डालेगा।
2: नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं है। प्रॉमिस करो तुम घर आएगा।
3: प्रॉमिस, जरूर आएगा, काय को नहीं आएगा। अभी अंकल हमको खलास करेगा ना, जब भी आएगा।
4: 1953 में ठोकर, 1954 में टैक्सी ड्राइवर, देवदास, मैरीन ड्राइव, रेलवे प्लेटफॉर्म, चंगेज खान, नया दौर, मधुमति, अमरदीप, काला पानी, लाइट हाउस, कागज के फूल।
5: मिस्टर आयर, आर यू देयर? हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी।
4: ब्लैक कैट, जिंदगी और ख्वाब, सूरज, मॉडर्न गर्ल, शिकार, दिल और मोहब्बत, और इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में चाची 420। अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला की बहन थी नूरजहां, जिनसे इनका विवाह हुआ था।

जॉनी वॉकर को उनकी भूमिकाओं के लिए हम हमेशा याद करेंगे। उन्होंने जो जीवंत अभिनय किया है सिने जगत के रुपहले पर्दे पर और जो छाप छोड़ी है हमारे दिलों में, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: ਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ।
1: ਆਓ ਜੀ।
2: ਓ ਆ ਗਈ ਰੋਡ ਵੇ।

आ मैनू यब खाना पता नहीं की पा दिता। ए स्टेज ते बीबियां बड़े पाउडर सुरखी मत के आईया ने, जिवें औत दी समाध लिपी हुंदी।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा, जिस दे तहत तुसी आनंद मार रहे हो सदाबहार पंजाबी गीतां दा। पेशा प्रोग्राम दा अगला गीत गुरदास मान दी आवाज़ दे विच संगीतबद्ध कीता है श्याम सुरेंद्र ने।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: ओ ज्ञान भाई, जदों तू काम शुरू कीता सी तां लोगां तक अपनी पहुंच किवें कीती?
3: ओ किवें, की गल हो गई?
2: ओ भाई, मैं भी नवीं दुकान खोल ली ते नवां माल भी पा लिया, स्कीमां भी बड़ियां देतियां, पर समझ नहीं आउंदी लोकां तक अपने काम दी पहुंच किवें करिए।
3: ओ फिकर करदी कोई गल नहीं, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दा सहारा लै।
2: ना ओ किस तरह भाई?
3: आकाशवाणी एफएम बठिंडा ते मशहूरी दे के सिर्फ बठिंडा ही नहीं नेड़े तेड़े दे 70 किलोमीटर दे दायरे तक तुसी अपनी गल पहुंचा सकदे हो। जदों मैं काम खोलिया सी उस वेले मैं यही कीता सी ते अज वेख बिजनेस तां चल्लिया ही ते बठिंडे दे आले दुआले 70 किलोमीटर तक मित्रां दा नां चलदा है।
2: भई एदे लई करना की पऊगा?
3: करना है एक नंबर डायल 78-379-63-306 ते इस नंबर ते इश्तिहार देण लई जानकारी हासिल कर सकदे हो। नालो नाल एक ईमेल भी तुसी कर सकदे हो airfm.bti@gmail.com दे उत्ते।
2: ए तां भई तू बहुत सौखा करता, मैं भी हुणे डायल करदा 78-379-63-306।
4: ਦੋਸਤੋ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 10:35 ਦੇ 51 ਸਕਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਪਟਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੇ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

इस प्रोग्राम में सानू तकनीकी साथ समूह टैक्निकल स्टाफ वालों मिलिया। प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। इस दे नाल ही मैनू सुखमान नू प्रोग्राम गीत पटारा खत्म करन दी दिओ आग्या। नमस्कार। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी ते समां हो रहा 10:59:34 दा। ठीक 11 बजे तुसीं सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों, अते 11:05 ते सुनोगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी FM रेनबो दिल्ली दे प्रसारण, जो कि 12 बजे तक जारी रहेगा।

0: में प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल है। कल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क तथा उच्च स्तर की तैयारी में है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके कारण भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। शिवसागर जिले में ही कल 7 और लोगों की मौत हुई। ऊपरी असम के जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि विश्व के 75% बाघ भारत में है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय जय शिव। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा इस जहान में, मुझे लगता है, जो शिव में अपना गुरु ना देखता हो। आज सुबह ही जयपुर में मेरे एक दोस्त है विजय गोलेचा जी, उसने बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, मुझे लगा आपसे शेयर कर लूं। लिखते हैं भाई, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं, इसलिए मेरा गुरु सिर्फ एक नहीं। इस जीवन के सांसों के कारोबार में कभी कोई क्षण ऐसा होता नहीं जिसमें नया कुछ मैं सीखता नहीं। ये वक्त ही हर वक्त अपनी एक नई सीख देकर जाता है, मगर वो क्या नहीं जो हमने अपने जीवन में किसी ना किसी से कुछ नया सीखा नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं, इसीलिए मेरा गुरु सिर्फ कोई एक नहीं। और ऐसा ही कहती है माधुरी दीक्षित। वो कहती है कि मैंने गुरु की छवि बिरजू महाराज और सरोज खान दोनों में ही देखी है। अर्जुन कपूर को अपना गुरु अनुपम खेर लगते हैं। दर्शन कुमार कहते हैं कि नसरुद्दीन शाह से बढ़कर मेरा कोई और गुरु नहीं है। राहुल भट्ट को अपना गुरु अनुराग कश्यप में दिखाई देता है, तो वहीं अली फजल कहते हैं कि सौरभ सचदेवा जैसा कोई गुरु मुझे आज तक नहीं मिला है। और इन सब लोगों ने एक ही बात कही है, और वो ये है कि इन सब गुरुओं ने सीख बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के दी है, जिससे हमारा जीवन बेहतर और सुखद हो सके। तो सभी गुरुओं को दिल से, मन से प्रणाम, और गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

जय श्री राम। विराट राम और विकराल रावण की रामायण। जी हाँ, और अब आ गई है रामायण के ट्रेलर की नई रिलीज डेट। नितेश तिवारी, जो कि जाने जाते हैं चिल्डर पार्टी, भूतनाथ, दंगल, छिछोरे और बवाल जैसी पिक्चरों से, उनकी रामायण पार्ट वन ट्रेलर का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार है। रणबीर कपूर, सई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे सितारों से सजी नितेश तिवारी की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का ट्रेलर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही देखने को मिलेगा, यानी कि कल। जी हाँ, कल स्पाइडरमैन फिल्म रिलीज हो रही है और उसी के साथ रिलीज हो रहा है रामायण का ट्रेलर। 30 जुलाई बृहस्पतिवार सुबह 4:15 पर वर्ल्ड वाइड रामायण का ट्रेलर रिलीज होगा। दोस्तों, एक बात पे जरा गौर फरमाइएगा, ये सारी बातें ना ट्रेलर के लिए हो रही है, फिल्म की नहीं हो रही है। जी हाँ, दो भाग में बन रही है रामायण। पार्ट वन दिवाली 2026 और पार्ट टू दिवाली 2027 में दुनिया भर के सिनेमा पर्दों पर रिलीज होगी। यश जो है वो प्ले कर रहे हैं लक्ष्मण का रोल, सनी देओल हनुमान जी का, और साउथ के सुपरस्टार यश प्ले कर रहे हैं रावण का रोल, साई पल्लवी है सीता मैया और रणबीर कपूर है श्री राम की भूमिका में। वैसे आपको किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है, सनी देओल को एज हनुमान देखने में या फिर रणबीर कपूर को एज श्री राम देखने में?

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

स्थिर रखना। 8 अगस्त 2026 तक VLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

और आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स। कुछ याद आया इस ढोलक की छाप से, इस धुन से, इस संगीत से? सच सच बताओ कितने लोग झूमे, झूमने शुरू हुए।

अभी जयपुर एक शादी में गई तो जो छोटा महिला संगीत होता है घर घर का, उसमें सबसे पहला गाना जो बजा वो ये था। 38 साल पहले गंगा जमुना सरस्वती का ये गाना आज भी महिला संगीत में सदाबहार है। लता जी की आवाज, अनु मलिक जी का संगीत और इंदिवर की कलम ने जादू अभी तक बिखेरा हुआ है।

अलग सी ना मस्ती है इस गाने में। क्यों दोस्तों, ऐसा लगता है कोई देसी मिट्टी की खुशबू सी आ रही है, शादी की मस्ती है, ढोलक की थाप है, और फिर न जाने क्यों इस गाने से कुछ अपनापन छलकता है। तो चलिए अब ये बताइए, विक्रांत मेसी अगर विलेन के रूप में आ जाए तो

आपका ये जो अब तक का उनके साथ अपनापन वाला फील है ये बरकरार रहेगा? भाई ऐसा है, अजय देवगन की फिल्म चौहान में 12वीं फेल नेशनल अवार्ड विनर विक्रांत मैसी विलन नजर आने वाले हैं। उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होने वाली अब तक की जो जानकारी है कि जब अनाउंसमेंट हुई थी तो बॉलीवुड गलियारों में काफी हलचल हुई थी। अजय इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आने वाले हैं। कश्मीर के बैकड्रॉप पर यह फिल्म सेट है और जब चौहान फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो समझ आ गया था कि अजय एज ऑलवेज एक दमदार कैरेक्टर निभा रहे हैं और विलेन के रूप में अब 4 चांद लगाएंगे विक्रांत मैसी। वेल, लेट्स सी क्या होता है।

0: अजय इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आने वाले हैं। कश्मीर के बैकड्रॉप पर यह फिल्म सेट है और जब चौहान फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो समझ आ गया था कि अजय एज ऑलवेज एक दमदार कैरेक्टर निभा रहे हैं और विलेन के रूप में अब चार चांद लगाएंगे विक्रांत मैसी। वेल लेट्स सी क्या होता है।
1: Oh

आपको क्या लगता है भाई, सलमान खान का अंदाज जरा दबंग है इसलिए टाइगर ऑफ बॉलीवुड कह सकते हैं? अजय देवगन जैसे ही पर्दे पर आते हैं, न जाने उनमें क्या आ जाता है कि वो अपने आप ही एक क्या गरजने वाले बाघ बन जाते हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म का नाम बागी है, बट बाकी अभी थोड़ी ज्यादा जरूरत है और मेहनत करने की। भाई मुझे तो लगता है फॉर मी इट्स अजय देवगन, आपको क्या लगता है? तो चलिए, अब क्योंकि हमने बात कर ही ली है तो हम सवाल पूछ ही लेते हैं कि हमारे आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल क्या है। तो जरा कान पास में ले आइए, थोड़ा और थोड़ा और, हाँ एकदम क्लैरिटी के साथ जरा सुनिएगा। बॉलीवुड फिल्म का नाम बताना है जिसका नाम सबसे लंबा है, और लंबा शब्दों में, अक्षरों में नहीं। जी हाँ, बॉलीवुड फिल्म का वो नाम जो सबसे लंबा है शब्दों में और अक्षरों में नहीं। देखते हैं क्या करते हैं अब आप लोग।

दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो चलिए, आप बताइए क्या लगता है आपको। ओ, ये मेरा सरताज वाला क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। जी हाँ, ये तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, यूं बस मन में आ गया कि आपके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री का बाघ कौन है, जो अभी आया, सिंघम यानी कि अजय देवगन, या फिर टाइगर सीरीज का जो एक्टर है हमारा सलमान खान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, या फिर हमारा टाइगर श्रॉफ जो कि बागी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ट्रेयर्स में अब एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रही हूं जिसके फैन हम और आप दोनों ही हैं, और जो भी सिनेमा को पसंद करता है वो भी इसे एक क्रिटिक के रूप में सराहता है। जी हाँ, 20 साल पहले 2 जुलाई 2006 को रिलीज हुई थी विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा। विशाल ने ओथेलो को, विलियम शेक्सपियर के इस नाटक को, उत्तर प्रदेश के परिवेश में पेश किया था। राजनीति, अपराध, रोमांस, धोखा, सबको मिलाकर एक जबरदस्त कहानी बुनी। अजय देवगन, सैफ अली खान, करीना कपूर, कोंकणा सेन, विवेक ओबरॉय की बेहतरीन एक्टिंग से सजी इस फिल्म को आलोचकों की भी खूब तारीफ मिली, और ये ओमकारा हिंदी सिनेमा के सबसे पॉपुलर ड्रामा फिल्मों में से एक बन गई। 2003 में बनाई उन्होंने मैकबेथ पर मकबूल, हैमलेट पर बनाई हैदर जो कि रिलीज हुई 2014 में। जी हाँ, तीनों फिल्मों को भारतीय सिनेमा के साहित्य पर आधारित बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। ओमकारा में सैफ अली खान ने दिया था एक जबरदस्त सरप्राइज, क्योंकि चालाक लंगड़ा के किरदार में देखकर लोग हैरान हुए थे। अक्सर एक रोमांटिक सॉफ्ट हीरो के रूप में नजर आने वाले सैफ अली खान चालाक लंगड़ा के किरदार में खूब हिट हुए और खूब तारीफ बटोरी, और ऑफ कोर्स पुरस्कार भी। अजय देवगन ने एक ताकतवर ग्रामीण नेता की स्थानीय बोली और बॉडी लैंग्वेज को अपनाया था। वेल, एज ऑलवेज ऑन स्पॉट रियल ही लगे। तीन तीन नेशनल अवार्ड से सम्मानित ये फिल्म, जिसमें कोंकणा सेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला और बेस्ट ऑडियोग्राफी मिला इस फिल्म को, ओमकारा।

बर्थडे टू यू। आज संजू बाबा का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हम सबकी तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, मुरली प्रसाद शर्मा यानी कि मुन्ना भाई MBBS, या फिर वास्तव में बलराम राकेश, संजय बाबा छाए रहे, छाते रहे और छाते रहेंगे। सुनील दत्त और नरगिस के पुत्र संजू बाबा। कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इनकी जिंदगी के। जानते हैं, जब बहुत छोटे थे किडनैप हो गए थे, जी हाँ, लेकिन वापस लौटा दिया गया था इन्हें सही सलामत। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर बाद में हम सभी जानते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जाके वहां पे छोड़ा। और तो और, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार इनके पिता को कहा था, इतने रिबेलियस को जरा आप एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दीजिए। और किस्सा बताऊं इनका, सलमान खान ने इन्हें एक बार बहुत बढ़िया महंगी कार दी, संजू बाबा ने चाबी उठाई, दरिया में फेंक दी और गाड़ी वहीं कितने दिन तक खड़ी रही। वेल, संजय दत्त को गोल्ड मेडल मिल चुका है फॉर बीइंग दी एक्सेप्शनलिस्ट एयर गिटारिस्ट। जी हाँ, तबला भी कमाल का बजाते हैं। और जब ये जेल में थे तो ट्रैश कैंस और मड पॉट्स के साथ में वेट लिफ्ट करते थे ताकि हिट एंड फिट रहे। साथ ही वहां पर इन हाउस प्रिजन रेडियो प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे ताकि अपने साथ साथ औरों का भी एंटरटेन करते रहे। हमें हम सब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप यूं ही स्वस्थ और मस्त रहें, पर्दे पर आते रहें और हम सबका एंटरटेनमेंट करते रहें। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।

बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी, क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या कभी आपने इनका नाम सुना है? वैसे आपको बता दूं, हम सबके फेवरेट रहे हैं ये। जैसे ही पर्दे पर आते थे, पेट में गुदगुदी अपने आप होने लगती थी, और फिर जब ये एक शराबी वाली एक्टिंग करते थे तो लगता था ना जाने सेट पर आने से पहले कितनी बॉटल्स उड़ेल कर आए हैं। और शायद इसीलिए इनका नाम भी पड़ा वो जो अब मैं बताने वाली हूँ, जॉनी वॉकर। जी हाँ, नवंबर 11 1926 को जन्मे थे, 29 जुलाई 2003 को साथ छोड़ गए थे। इंदौर में जन्मे थे, ग्रेटेस्ट मोस्ट लव्ड कॉमेडियंस रहे हैं ये अब तक। सीआईडी, प्यासा और मधुमति और शिखर और न जाने ऐसी कितनी पिक्चरें जिसमें इन्होंने अपने किरदार से हम सबको हंसाया है, लुभाया है। जानते हैं कि मुंबई आके सबसे पहले इन्होंने एक बस कंडक्टर का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी ये केवल कंडक्टर नहीं करते थे, हर एक पैसेंजर को अजीबोगरीब नाम से एक्टिंग कर करके बॉडी लैंग्वेज से न जाने कैसे कैसे बुलाते थे कि भाई तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है, और वो भी ऐसे ही अनाउंसमेंट नहीं, बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। और तभी इन्हें नोटिस किया बलराज साहनी साहब ने, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गुरुदत्त जी को, और बस उसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। इतना शौक था जॉनी वॉकर साहब को पिक्चर में काम करने का कि जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती और उनका फेवरेट एक्टर कोई स्टंट करता तो घर आके उस स्टंट को इनैक्ट करते थे, कोशिश करते थे करने की। और जब इन्होंने गुरुदत्त जी के सामने एक शराबी की एक्टिंग की तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम है जॉनी वॉकर। 300 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया, और एक समय ऐसा आया जब गुरुदत्त साहब छोड़ गए

और इन्हें भी अजीबो गरीब किरदार वाली पिक्चरें मिलने लगी, तो इन्होंने कहा कि जो कॉमेडियन एक एक्ट है, जॉनरा है, मैं उसकी इंसल्ट नहीं करूंगा और मैं अब एज अ कॉमेडियन नहीं काम करूंगा। लेकिन जब तक इन्होंने काम किया, पर्दे पर छाए रहे, हंसाते रहे और एक ऐसी अमिट छाप हम सब पर छोड़ गए जो कभी भी जो भी सिनेमा प्रेमी है वो भूल नहीं सकता। जॉनी वॉकर साहब।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड ग्रेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: नमस्कार
0: जी,
1: हिमा
0: कैसी हैं आप?
1: जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी,
0: तो
1: और
0: मेरे प्यारे
1: आपका
0: श्रोताओं,
1: शो सुनकर और भी अच्छी हो गई हूँ
0: थैंक यू सो
1: मैं
0: मच, थैंक यू सो
1: आपका।
0: मच। पहचानिए कि आज हमारे साथ सरताज बॉलीवुड का कौन बना है? वेल, मिसेस धर्म भाटिया। जानते हैं दोस्तों, .11:30 पे इनका जवाब, और वो भी बिल्कुल सही। मैंने आपसे पूछा था, ऐसी बॉलीवुड फिल्म का नाम बताना है जिसका नाम सबसे लंबा है, अक्षरों में नहीं शब्दों में, और अधिकतर जो गलती करी वो सब ने अक्षरों वाला नाम, यानी कि एल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है वो लिखा। तो मिसेस धर्म भाटिया, बताइए क्या है सही जवाब?
1: हाँ जी, 2 पैसे की धूप, 4 पैसे की बारिश।
0: यस, तो इसमें थोड़ी सी गलती ये है, 2 पैसे की धूप और 4 आने की बारिश। 2009 में ये फिल्म आई थी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय यस दीप्ति नवल, और इसमें मनीषा कोइराला ने इनेक्ट किया था। तो इतनी जल्दी ये जवाब आपके पास कैसे पहुंचा, ये हम सब जानना चाहते हैं। सच बोल
1: हेलो,
0: सकती हैं? हाँ, इतनी जल्दी आपके पास ये जवाब कैसे पहुंचा, ये हम सब जानना चाहते हैं, और आप सच बोल सकती
1: ये
0: हैं।
1: सॉरी जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो गूगल से ही पूछ कर जवाब दिया
0: जी
1: है।
0: जी
1: हाँ
0: जी तो सभी ने देखा होगा, ऑनलाइन सर्च किया
1: जी, हाँ
0: होगा,
1: जी, क्योंकि
0: लेकिन वो
1: बहुत पुरानी
0: सही।
1: पिक्चर है तो
0: जी, लेकिन
1: इतना
0: वो
1: ध्यान भी नहीं था, तो पूछ कर ही नहीं
0: बिल्कुल
1: दिया जवाब।
0: बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि आपकी तरह सभी ने ऑनलाइन सर्च किया था, लेकिन उन्होंने जवाब, जो मेरा सवाल था, वो सही से नहीं सुना। तो
1: हाँ
0: जानती
1: जी,
0: हैं
1: हाँ
0: मिसेस
1: जी,
0: धर्म
1: हाँ
0: भाटिया, आपके साथ दो और लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो है हरीश
1: जी,
0: गौर मेरठ से और बसंत तोमर मेरठ से, लेकिन इनका
1: हाँ जी, हाँ
0: जवाब
1: जी,
0: आया
1: हाँ
0: 11:36 और 11:37 पर।
1: जी, हाँ
0: तो
1: जी,
0: अब ये तो हुई बात फिल्मों की, इतनी फास्ट जो आपने टाइपिंग की है, क्या इसने भी कोई रिकॉर्ड हासिल किया है क्या?
1: हाँ जी,
0: इतनी फास्ट जो आपने नाम टाइप किया है, इसने भी क्या आपने कोई रिकॉर्ड हासिल किया है?
1: नहीं, मैंने रिकॉर्ड हासिल नहीं किया, क्यों? रिकॉर्डिंग करनी मेरे को आती ही नहीं है असल में।
0: पर इतनी जल्दी जल्दी
1: एक
0: आप टाइप कर
1: हमारे
0: लेते
1: लिसनर
0: हैं?
1: है,
0: जी
1: ये बिहार के
0: ओके okay.
1: सरफराज आलम जी, वो
0: जी जी जी
1: रिकॉर्ड करते रहते हैं मेरी बातें, और अपनी बातें भी बड़े अच्छे लगते
0: आहा,
1: हैं। ऐसे बेटे जैसे प्यार मिलता है मेरे को लगता है उनसे, तो
0: हाँ हाँ हाँ
1: मेरे को
0: हाँ
1: रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती असल में।
0: नहीं, सो
1: हाँ
0: मेरा रिकॉर्ड से मतलब था, आपने ना बहुत फास्ट टाइप किया, तो
1: जी,
0: आपकी टाइपिंग इतनी फास्ट हो गई है जवाब दे दे
1: ये
0: के।
1: फास्टिंग तो हम टीचिंग ले रहे हैं, तो रिटर्न
0: आहा,
1: में तो मतलब काफी प्रैक्टिस हो जाती है, तो
0: क्या
1: इसलिए
0: बात है,
1: फास्ट लिखा भी जाता है।
0: आप टीचर हैं और आज गुरु पूर्णिमा है, तो आपको
1: जी जी
0: हमारा
1: मैं
0: वंदन, आपको
1: तो, हाँ
0: हमारा
1: जी,
0: प्रणाम।
1: थैंक यू थैंक यू। मैं तो
0: तो
1: रिटायर्ड हूँ, 7 साल में रिटायर हो गई थी मैं, पर
0: जी जी जी जी
1: अब भी आप जैसों के शो सुन के मैं एंजॉय करती हूँ, लाइफ अपने एंजॉय कर रही हूँ,
0: मुझे तो
1: बहुत ही
0: ये
1: मजा
0: जान
1: आता है, बहुत ही अच्छा लगता
0: मुझे
1: है।
0: तो ये जानना है कि आपको अपने सबसे पहले गुरु की कौन सी याद याद है?
1: पिक्चर,
0: नहीं, आपके जो गुरु होंगे, आपके भी तो कोई गुरु रहे होंगे ना, जिनको
1: हाँ जी,
0: आप
1: हाँ जी,
0: गुरु
1: बिल्कुल,
0: मानते
1: हमारे
0: होंगे।
1: गुरु जी थे, सबसे पहले मेरे 5th क्लास में बलवंत कौर जी थे, जो
0: जी
1: मेरे को प्यार भी करते थे और बहुत अच्छे लगते थे। फिर 10th में आके हमारी मैथ की थी, इंग्लिश की मैडम थी, फिर JBT की मैंने सुजीत कौर मैडम थी, तो जिन्होंने से मैं इंस्पायर हुई हूँ और मैं आगे बढ़ती रही हूँ, तो
0: क्या बात है,
1: आई
0: चलिए
1: एम
0: फिर
1: वेरी
0: तो आज
1: प्राउड ऑफ
0: बहुत
1: दोस्त।
0: अच्छे दिन हमारी एक गुरु से बात हुई है। आपका आने वाला समय और दिन बहुत अच्छे बीते, आप स्वस्थ
1: थैंक
0: रहे,
1: यू थैंक यू
0: सेहतमंद रहे,
1: थैंक यू रीना
0: और
1: जी,
0: यूं
1: थैंक
0: ही आकाशवाणी FM रेनबो सुनती रहें। थैंक यू सो मच
1: यू,
0: हमारे साथ जुड़ने के लिए, और
1: थैंक
0: इसी
1: यू,
0: के साथ दोस्तों अब समय है इजाजत लेने का। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट आफ्टरनून एंड एंजॉय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले,

0: इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Lok Sabha Speaker Om Birla alleged that some opposition members are deliberately disrupting the question hour, which is not appropriate. He added that obstructing the proceedings of the House in a planned manner is not in accordance with parliamentary traditions. The Rajya Sabha was also adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the paper on the table of the House. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues.
0: Rahul Gandhi is using all kind of undemocratic languages, which is not in the setting for correct discourse in parliamentary democracy. One must use civilized and soft language. We may differ with each other, but the way Rahul ji is using this demeaning kind of languages, which is not good for democracy, which is not good for our country.
2: The proceedings of the Lok Sabha has resumed now and Rajya Sabha is adjourned till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers

सुनना ना भूलना दोस्तों, मिति 29 जुलाई 2026 शाम 5:30 बजे दिन होवेगा बुधवार।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: मिल गिल आया करो, मिल गिल आया करो, जिथे जिथे जी करदा है पेके सोहरे मामा कोले भैणा कोले, मिल गिल आया करो जिथे जी करदा है। आउण वालियां नस्लां ने कदे उड़ीकना किसी नू, आउण वालियां नस्लां ने उड़ीकना कदे किसी नू, भुलने पैने ने ओ पुराने राह पेक्यां दे ओ पुराने राह, पुरानियां थावां जिथे असी बड़े चाई चाई जांदे सी। मेहरबंदी लैके हाजर हाँ प्रोग्राम कर परिवार, मेरे वालों तमाम स्रोतियां नूं सत श्री अकाल
3: जी। ते पेके जा सहेलियां दे नाल असी हसना, दुख सुख पुछना ते अपना मैं दसना। असा माई नूं भी ले आए मना कुड़ियो, आया सौण दा महीना मैनू चा कुड़ियो, आया सौण दा महीना मैनू चा कुड़ियो।
2: सही गल है जी, सौन दा महीना एक ए महीना है जा हुंदा जेड़े आउण वाले त्यौहार लेके आउंदा है, खुशियां दा, खेड़ियां दा, रंगां दा, ते खास करके साडियां भैणां दा चावां दा है दिन सौन महीना। सौन महीना खुशियां लेके आउंदा है, नचदे हैं टपदे हैं, हत्थां ते मेहंदी लाउणी है। मेहंदी कौल दे विच भौंती जांदी सी, ते मेहंदी केड़ी हुंदी सी? सब तो पहला आपां सौन दे महीने दी गल करिए ना मैडम। पहला
3: जी हुण तां जिहड़ियां हैगे दूजियां मेहंदियां आ गईयां, पहलां तां आपां जिहड़े लगदियां मेहंदी दे पत्तियां तों उत्थों रगड़ के ओह वाली बनाई जांदी सी, ओह मेहंदी लाई जांदी सी ना।
2: बिलकुल बिलकुल, ओह रगड़ दे पहलां देखो पत्तियां नूं, फिर ओहदी स्मैल ना कहिंदे किन्ना किन्ना चिर हत्थां तों आई जांदी,
3: ओहदा रंग भी बहुत गूढ़ा हुंदा सी। हुण वाले टाइम तां जिहड़े कहिंदे बनावटी आपां कहिंदे ने पंजाबी दे विच, ते पर पहलां बहुत वधिया रंग भी बहुत सोहणा चढ़दा हुंदा सी।
2: इह तां जिहड़ा रंग है ना अमरजीत जी, ये रंग कैमिकल है, ये तुसी देख लो हत्थां दी, मेरे तां खुरख होण लग जांदी, मैं तां लाई नहीं पाउंदी। पर जिहड़े ओह रंगां दी स्मैल ते खुशबू हुंदी सी, रात नूं मेरी दादी ने भिउणा ते फिर लाउणा, सच्ची समें ने सत्थों चीज़ां खोलियां
3: जी। ते फिर हुण आपां गल कर लईए कि फिर तुसी खीर पूड़े बना ले।
2: खीर पूड़े मैं तो जी बना के खा ले, मैं लगता मैं तो दो बारी खा ले, क्योंकि पंजाबियों का ढिडी एडा वड्डा जिहड़ा भरदे नहीं खीर पूड़िया मेरा
3: जी। जे तो शुरुआत हो जाए सौण दे महीने दी, तो फिर वो ना हो तो फिर होर की होवे ना।
2: अमरजीत जी इत्थे मेरी एक गल याद आ गई बिस्कुटां दी, सौण दे महीने ना मेरी नानी ने बिस्कुट लेके आने, सच्ची ओ रूह दी खुराक। हुंदा तां बहुत कुछ खाण नूं हुंदा सी, पर मेरी नानी ने पहली गल तां

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सेवा बल विच कांस्टेबल जनरल ड्यूटी दी भर्ती लई नवे नेम जारी किए ने। इन्हां नेमां तहत सलाना भर्ती प्रक्रिया विच कांस्टेबल जनरल ड्यूटी दी असामियां दा 50% साबका अग्निवीरां लई राखवां रख्या जाएगा। ए नवे नेम 27 जुलाई तो लागू हो गए ने। नवे नेमां दे लागू होण नाल 2011 दे पुराने भर्ती नेम हुण लागू नहीं होणगे। नोटिफिकेशन मुताबिक साबका अग्निवीरां नूं लिखती प्रीख्या, शरीरक म्यारी प्रीख्या अते शरीरक कुशलता प्रीख्या तो छोट दित्ती जाएगी। साबका अग्निवीर राखवियां असामियां लई भर्ती 2 पड़ावां विच कीती जाएगी। पहले पड़ा विच राखवियां असामियां दा 50% भरिया जाएगा अते दूजा पड़ा बाकी खाली असामियां लई एक खुली मुकाबलेबाजी परीक्षा होएगी। पहले अग्निवीर बैच दे उम्मीदवारां नूं वध तों वध उम्र विच 5 साल दी छोट दित्ती जाएगी अते बाद दे बैचां नूं वध तों वध 3 साल दी छोट दित्ती जाएगी। आज गुरु पूर्णिमा जिसनों व्यास पूर्णिमा भी किया जाता है मनाई जा रही है। ए दिन अध्यात्मक अते विद्यक गुरुआं नूं समर्पित है। इस मौके ते लोक अपने गुरुआं नूं याद करते ने अते उनां दा धन्नवाद करते ने। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने तो बाद इस मौके ते अपना पहला उपदेश दिता सी। भगवान बुद्ध ने बोध गया तो सारनाथ की यात्रा की थी ते पूर्णमासी वाले दिन अपना उपदेश दिता। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके ते सारिआं नूं शुभकामनावां दित्तीआं ने। भारतीय जनता पार्टी पंजाब संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें जन्म दिवस साल नूं मनाउण लई अज तों राजव्यापी समरसता संकल्प अभियान शुरू कर रही है। इसका उद्देश गुरु रविदास जी के बराबरी, माण, समाजिक सद्भावना ते समाजिक न्याय के सदीवी संदेश नूं पंजाब भर विच फैलाउणा है। प्रदेश भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि यह देशव्यापी मुहिम जो अज तों गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके से शुरू हो रही है 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा तक जारी रहेगी। इस समय दौरान कई धार्मिक प्रवचन, सभ्याचारक प्रोग्राम ते भाईचारक लंगर होंगे। श्री ढिल्लों ने कहा कि आज श्री गुरु रविदास महाराज समरसता दीप महोत्सव कराया जाएगा जिस दौरान पंजाब भर के गुरु रविदास मंदिरां विच भजना दे नाल दीवे जगाए जाएंगे। इस तो बाद आज तो 10 सितंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज कलश वंदन अभियान चलाया जाएगा जिस तहत सीर गोवर्धनपुर वाराणसी विखे गुरु रविदास जी के जन्म स्थान तो पवित्र कलश लैके गए।

FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा ते स्टूडियो दी कड़ी ते समा 1:16 ते 16 सेकेंट। पेश है प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी। अज दा प्रोग्राम लैके हाजर हाँ मैं रबनदीप कौर। मेरे वालों तमाम स्रोतियां नूं नमस्कार। तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो स्टूडियो दा नंबर डायल करके 0164-2240-331 ते नंबर डायल करके तुसी सुन सकते हो आपदे पसंदीदा कोई भी गीत। ते पहला सुनते हैं एक मेरे पसंद दा गीत।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी। स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: जी। धन्यवाद
0: की नाम ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: मैं ग्राम पयोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचलिया,
0: जी, ते गीत केड़ा सुनोगे?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी, शुक्रिया जी कॉल करने दे ली।
1: जी। धन्यवाद मैम।
0: जी,

प्रोग्राम दी होस्ट रहूंगी मैं यानी के ममता अरोड़ा। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना सिलसिला रब ने बनाईया जोड़िया। मिति 30 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 12:30 बजे। एक खास मुलाकात एक प्रेरणादायक सफर सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग सतपाल बराड़े साहिब जी।

0: रामसर साइट्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 26 टू 100।
1: डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई।
2: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
4: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना।

0: चाहिए।
1: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे? तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
1: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
1: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे हैं,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
6: असम में शिवसागर, घोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास

0: खास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है।

0: में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
2: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
3: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
4: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
1: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीत

0: ने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली तो। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी कड़ी ते समा 2:30 ते 34 सैकंड ते पेश है हुण प्रोग्राम सुरीली दोपहर।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-4200-223।

प्रोग्राम दी होस्ट रहूंगी मैं यानी के ममता अरोड़ा। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना सिलसिला रब ने बनाईया जोड़िया। मिति 30 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 12:30 बजे एक खास मुलाकात एक प्रेरणादायक सफर सिर्फ अका

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: सुनते हाँ गीत कुलदीप मानक की आवाज़ विच फिल्म लंबरदारनी। इस गीत की फरमाइश साढ़े कोल आई है सतीश कुमार बंसल पिंड स्वर्णखेड़ा नियर मंडी डब्बा वाली। तो एक साढ़े कोल खत आया है पिंड बहमन दीवाना जिला बठिंडे तो अमृतपाल सिंह दीपी जसकरन बीरपाल लक्षदीप तुरन वेदी ते उन्होंने गाना सुनना चाहिए। ते एक साडे कोले आया है गुरलाभ माही नंगल भतीजा रवाब सिंह ते भूरा सिंह लंबरदार माही नंगल बूटा सिंह मछाणा। ते एक साडे कोले आया है सिविया रोड गली नंबर नेड़े पिंड गिलपत्ती बठिंडे तो खत लिखण वाले स्रोता है अमरजीत सिंह सिद्धू मनजीत कौर सिद्धू पंचमीत कौर संधू ते मीता संधू। ते एक होर स्रोता ने सानू वट्सएप ते सुनेहा भेजा है जग्गा सिंह रामा मंडी बलजीत कौर रामा मंडी सारे पोत्रियां नवदीप कौर गुरवीर कौर जसनूर ते आपां नूं सत श्री अकाल बुलाउंदे है। ते इन्हां दी फरमाइश ते सुनदे हैं कुलदीप मानक दी आवाज़ विच ये गीत।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहले गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु
1: जी
0: जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई

0: बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: बताए। हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें आज।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं
1: और
0: क्योंकि
1: हम
0: हमने भी तो
1: भी
0: सीखा है।
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है, वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं, तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है,
1: जी
0: परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं, और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना आप? डर तो लगता है
1: डर तो
0: देखने,
1: लगता है।
0: लेकिन देख
1: जी
0: घूमने भी
1: जी
0: जाते हैं।
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं, तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी, कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: हमला
1: कर सकते
0: करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि
1: हैं।
0: जो सबकी बोलने की आदत होती है,
1: जी
0: समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहां जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता
1: जी
0: है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाएं वहां
1: जी
0: पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका
1: ध्यान
0: असंतुलन होता
1: विचलित।
0: है, ध्यान
1: जी
0: विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या
1: जी
0: कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल
1: हमारा
0: रखते हैं,
1: ध्यान
0: और
1: रखते
0: वो
1: हैं।
0: हाँ, और वो बताते भी हैं हमें, समझाइश भी देते हैं इस बात की।
1: जी
0: और
1: और आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल, जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी,
0: बिल्कुल,
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आपके क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है, पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। सोनाली, एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाती हैं किसी पार्टी फंक्शन में, तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस, या फिर और कुछ? साड़ी
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है।
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: जी और पहनती
0: और
1: भी है बड़े शौक
0: मौकों
1: से।
0: पर शौक से पहनती हैं।
1: जी
0: तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे, क्योंकि साड़ियों
1: कसावो
0: का
1: साड़ी केरल।
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है,
1: जी
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे। और शब्द बहुत अहम होते हैं कि
1: बहुत अहम होते हैं।
0: हाँ, वो एक तीर की तरह है। कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते हैं,
1: नहीं आते।
0: तो इसलिए जब भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है, तो आदर भी वैसे ही ममता जी, कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या हम उम्र हों, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं,
1: और व्यंजन
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है
1: और व्रत
0: प्रोग्राम।
1: के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन में हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल, और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
1: हाँ, मखाने की
0: और
1: खीर बनती है।
0: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं,
1: जी
0: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
1: आप गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव

0: अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए।
0: जी
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है,
0: जी
1: आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे, उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ,
0: जी
1: बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: जी
1: जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो
0: जी
1: उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे।
0: जी और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं, और एक स्वस्थ बाघ आबादी समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश भाग बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है,
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है।
1: तो सुने वही गाना।
0: जी

आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दार दार, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर, बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,

0: हाँ तो भाई,
1: जी
0: अरे एक
1: हमारे
0: साथ
1: एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी वाइफ।
0: अच्छा
1: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं।
0: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते
1: और
0: बाघिन।
1: एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में हम घूमने गए थे और जो दो दो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे, पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
0: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है।
1: और बाघिन से भी डरना जरूरी है
0: बिल्कुल। और
1: घर में
0: डर, हाँ वो
1: उपस्थित।
0: डर प्रेम वाला डर होना चाहिए,
1: जी।
0: क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
1: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन, गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे, यानी सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
0: और कसावू का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर
1: जी
0: किनारा ना।
1: जी
0: यही सुनहरी जरी इस साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
1: बहुत महंगी हो
0: तो
1: जाएगी फिर
0: बहुत
1: वो
0: ज्यादा
1: साड़ी।
0: महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो
1: हाँ, हो
0: जाएंगी।
1: सकते
0: तो
1: और
0: इसलिए कि वो ना ही लगे तो अच्छा है।
1: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
0: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
1: यानी
0: और
1: आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हाथ

0: करघाई ने हैंडलूम पर किया जाता है।
1: हम्म,
0: पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
1: और ये भी बता दें कि कसाबू साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाबू साड़ी पहन लेती है। और कसाबू साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है।

0: पहनावा ही नहीं बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
0: अभी गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां
0: पहन
1: पर
0: के पोस्ट करना।
1: पोस्ट करना,
0: हाँ
1: फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है।
0: जी
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसे
0: लोगों के
1: सखी
0: ज्ञान
1: से
0: में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब आप जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, है ना।
0: जी,
1: तो अब क्या करें
0: अब
1: हम,
0: ब्रेक
1: एक
0: लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
0: जी
1: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है, और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते
4: इस
0: हैं,
4: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
0: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी ने वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से।

0: कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं,
1: अरे
0: ये तो
1: मन
0: हम
1: बहुत है,
0: सब
1: भले ही हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में।
0: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही हैं,
1: पर
0: इससे
1: समय
0: बचना
1: के
0: चाहिए।
1: साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
0: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई, झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
1: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है। इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
0: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था। कागज पर, पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे, आय कितनी है और कितने खर्च करने हैं। महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए, और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का,
1: ये
0: फायदे भी
1: आपने
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्योहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाला, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं है।
0: और बुजुर्ग कहा करते थे, चादर जितनी हो उतनी
1: उतने
0: ही
1: ही
0: पांव
1: पैर।
0: पसारे।
1: जी
0: और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं।
1: जी
0: हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है। वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं, बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
1: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
0: बिल्कुल सही कह रही, क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना
1: गीत
0: इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी,
1: हाँ,
0: कहिए।
1: कहेंगे ममता जी, श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं
1: हैं
0: लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी
1: जी
0: तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख उपाय
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके,
1: जी
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है,
1: जी
0: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या। और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो
1: जी
0: तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं। और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो
1: जी
0: हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत के शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहां पर एक मिनट, हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं
1: जी
0: कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है,
1: जी
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें। तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे हैं।
1: जी
0: व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने,
1: चिरौंजी जी
0: और बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम, शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी। और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं, या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबुदाना न डालें, साबुदाने को अलग से कढ़ाई में भून कर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताजा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी

0: वह नमकीन सिंघाड़े की कढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही बड़े लिखकर भेजे
1: अरे
0: मुझे।
1: वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते
0: एक
1: हैं।
0: कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे। फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले। साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाए जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले। और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो, 5 मिनट के रख दे। फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनारदानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
1: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है,
0: जी
1: जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने। ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर,
0: जी
1: फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी। इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मेरे मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले,
0: जी
1: तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज
0: खूब
1: की
0: सारा
1: तुलना में
0: तला।
1: खूब सारा तला
0: हाँ
1: भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए।
0: जी
1: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे। कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए,
0: जी
1: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सोनाली, रात के कली एक ख्वाब में आए। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है,
1: जी
0: अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर
0: कई
1: वो
0: बार
1: बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलती हैं?
1: जी बोलना ही पड़ता है
0: नहीं
1: आजकल के
0: तो
1: छोटे भी।
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी
0: अगर
1: जी
0: हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना?
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है, और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है, इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है। अधिकार नहीं, उपहार, आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता। इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्मसम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं, और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है,
1: जी
0: आदर के लायक
1: कमाया
0: होना,
1: जाता है।
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है।
1: जी
0: आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: जी एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है, इसमें ऊंची आवाज के नहीं, बड़े

0: की जरूरत होती है, जहां आदर हो वहां रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रहे हैं और
0: नहीं आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे
1: जी
0: हैं
1: एक
0: तो।
1: साथी लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है, बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता, और रिश्ते बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया अभी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है,
1: जी
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहाँ कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हों या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं,
1: जी
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना,
1: हाँ
0: लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे।
1: जी और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं,
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए,
1: तो गाना सुनते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन
1: पर
0: बिल्कुल
1: रुकना
0: वक्त
1: पड़ेगा।
0: नहीं। तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: पिछले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में हमने पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष पेशकश आपकी नजर की थी।
1: कल खेल में हम हो न हो, घर बीच में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।
0: इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं।
2: सजन

0: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना
1: आज
0: है।
1: सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग, पार्श्व गायक मुकेश की विनम्र

0: अच्छा ये बताइए, अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते हैं ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखी पूरी पर्सनैलिटी अलग होती
0: अलग
1: है।
0: होती है
1: तो वैसा
0: बिल्कुल।
1: तो होता नहीं है, कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बंद।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को ही घर वापस आऊंगा, तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ, उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए फिर।
2: क्या

फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सर...

0: अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूं।
1: हम तो मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके पास रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा
0: जी
1: बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमेशा सुनता था।
0: क्या बात है।
1: तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी
0: क्या
1: में।
0: बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी
1: बहुत
0: विविध
1: बहुत।
0: भारती।
1: और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में,
0: हाँ
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे हांकते रहता था और सुनता रहता था
0: वाह वाह।
1: वो दौर। लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब वो
0: हाँ
1: अब वापस नहीं अरे हाँ, आएगा।
0: सच सच बात सच बात।
1: बहुत मजा आता था
0: तब
1: उस टाइम
0: जिंदगी में
1: पे,
0: एक सादगी थी
1: सच
0: और
1: में,
0: सब लोगों का साथ था।
1: सच में, सच
0: हाँ
1: में,
0: और बहुत खुशी थी।
1: बहुत
0: हाँ
1: खुशी थी।
0: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी हैं जिंदगी में, आशाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ
1: वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
1: अभी हमारी चॉइस की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा, अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना, तो
0: ये
1: ऐसा
0: बड़ा
1: होता है कि
0: मुश्किल हो
1: यार
0: जाता है।
1: कौन सा मेरे को
0: क्या
1: कौन सा पसंद है।
0: सुनाए, बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
1: तुम
0: तुम
1: अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
0: एक बहुत
1: और
0: प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।
1: हाँ क्या बात है, आप क्या फ्लूट उसमें बजाइए।
0: क्या बात है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है, और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है, तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना,
2: हाँ
0: आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।

0: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं, और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान, राजकुमार।
0: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है
1: वाह, सही
0: ना,
1: बात, सही
0: जो
1: बात है।
0: भोजपुरी शैली का
1: भोजपुरी
0: गाना
1: शैली
0: है।
1: के गाना।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है
1: यस
0: जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और
1: जी
0: बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना।
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा
1: कवाल,
0: गाना भी
1: हाँ
0: उन्होंने
1: हाँ
0: गाया है
1: हाँ
0: कि नहीं?
1: यस यस यस हाँ
0: मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब
1: हाँ
0: ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र
1: एग्जैक्टली
0: कृष्ण क्या
1: एग्जैक्टली
0: लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते हैं, मुझे

0: क्या बात है, मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता,
1: नहीं।
0: एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है,
1: हाँ
0: दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी
1: हाँ
0: उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में
1: हाँ
0: बाकायदा आते हैं,
1: है
0: लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं। तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है,
1: हाँ
0: मजरू साहब का ये गाना।
1: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे।

0: गोविंद, ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं
1: एक
0: है?
1: एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था,

0: और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं, उनके थ्रू ही मैं
1: अच्छा
0: गया था, उनके साथ
1: जी
0: आर्ट शो किया। जैसा
1: जी
0: इन्होंने बोला
1: हाँ
0: कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट के आर्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे,
1: एग्जैक्टली
0: सब
1: यस
0: बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा।
1: बिल्कुल
0: आज के
1: बिल्कुल
0: दौर पे ऐसा नहीं है, आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून दे के चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद
1: एग्जैक्टली
0: यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे हैं।
1: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
1: जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलूकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है।
1: जी
2: और आजकल के, सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता, जैसे गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया जाए, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो कि क्या होना है, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो,
1: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव नहीं
1: ज्यादातर
2: है।
1: गानों में आत्मा
2: हाँ,
1: नहीं है।
2: नहीं है।
1: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो
2: अच्छा
1: चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है, लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना
2: अरे, मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तनाई में यहाँ लौट
1: इसीलिए
2: गया जा। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
1: हाँ, ये सुनने
2: देखिए,
1: वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहां सी
1: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार
2: रात
1: बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है, मेरी बारी।
0: मैं सीरियस जाता हूँ। एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना वही मैं भी सोच रहा था,
1: तब तक
0: पर
1: ये सोच
0: उनको ये गाना है
1: ये,
0: प्लीज।
1: लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
2: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हे।
1: क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना।

0: मैं कुछ और गाऊं ठीक है?
1: और ही गाना पड़ेगा बिल्कुल नहीं।
0: ठीक है। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समा

0: क्या बात, क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गाना
1: देखिए
0: चुना।
1: लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात गा सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरे मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती, वो इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम वही तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का, एकदम वो सुनेगी क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा,
1: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता है, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूँ तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने।
0: क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिंस आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूं, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करो तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10-12-15 साल के जो जनरेशन आजकल तो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बहुत अच्छे,
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं,
2: यस यस यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट कर

0: सकते हैं
1: एग्जैक्टली
0: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
1: सही बात है.
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक-एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
1: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
0: बिल्कुल
1: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है. तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
0: जी जी
1: तो जज्बात उसके उभर आते हैं.
0: बिल्कुल
1: तो जाने कहाँ गए वो दिन.

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई
1: क्या
0: मंजिल।
1: बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
0: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर
1: जी
0: मुकेश जी नहीं होते तो।
1: जी
0: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है,
1: आम जनता के बहुत चहेते
0: बहुत
1: गायक।
0: चहीते गायक थे। यस यस
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं, और मैंने
1: हाँ
2: बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स सब ज्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो, गुजरात में तो हर घर में, हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो
2: बच्चा
1: गुजरात के,
2: दामाद
1: है
2: के,
1: ना।
2: दामाद है यस,
1: उनकी जो
2: बच्चे
1: पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है
2: हाँ
1: ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और
2: यस
1: ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी।
2: यस
1: उन्होंने
2: बताइए
1: घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये
2: खिलाफ
1: शादी की थी
2: जाके।
1: सरल वेन के
2: हाँ
1: साथ।
2: जी जी जी जी देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए
2: गुजराती
1: उन्होंने
2: गाने भी
1: और
2: बहुत
1: आज
2: सारे
1: इनफेक्ट
2: गाए।
1: जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन
2: और
1: था। हाँ
2: शादी ने
1: बिल्कुल,
2: क्या
1: ये भी
2: बना
1: बहुत दिलचस्प बात है।
2: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा,
1: हाँ मेरा ख्याल
2: फोर्टी
1: है शायद
2: सिक्स में,
1: कितनी
2: फोर्टी सिक्स में
1: हाँ, और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
2: 23 साल। हाँ
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
2: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के
1: तो फिर हम
2: गुजराती।
1: कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो
2: एक
1: गाएंगे।
2: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: चालिया क्या तमे,
1: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में।
0: जी
1: बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां
0: बिल्कुल
1: शोज भी उन्होंने काफी सारे
0: काफी
1: किए।
0: सारे किए।
1: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
0: एग्जैक्टली
1: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल
0: यस।
1: बिल्कुल। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
0: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
1: अरे बाबा क्या बात है,
0: हूँ
1: जरूर।

0: आंखों चार करी ने, बीमार करी ने, मारा भोरा दिल नो।
1: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए हैं, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो।
2: जी
1: ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके,
2: हाँ,
1: उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए। हाँ
2: जैसे मुक्ति,
1: हाँ अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना,
2: हाँ 16
1: एक
2: गाने हैं।
1: हाँ एक फिर कब मिलोगी भी है।
2: हाँ,
1: हाँ
2: लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं, जो
1: अच्छा
2: 16 गाने कुल गाए हैं उनके साथ वैसे उन्होंने,
1: हाँ हाँ हाँ
2: लेकिन
1: मुक्ति, सुहानी चांदनी
2: मुक्ति।
1: रातें।
0: हाँ।

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं,
1: जी,
0: फिर एक बहुत लंबा गैप आता
1: लंबा
0: है
1: गैप आ गया। हाँ,
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में।
1: साथी।
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं, क्या प्यारे गाने हैं। हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं। ये
1: हाँ, हुस्ने जाना है।
0: इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधर आ, आईना।

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूं, वो जरूरी है
1: जी
0: बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं
1: हाँ
0: नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं,
1: जी
0: मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला
1: हाँ
0: मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केर्सी लॉर्ड जो है, उन्होंने
1: केसी
0: सारा
1: लॉर्ड
0: अरेंजमेंट इस
1: अरेंजमेंट
0: इन
1: किया
0: गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है, जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और
1: जी
0: मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
1: सावन।

0: और अब बारिश का दूसरा गाना।
1: उषा खन्ना जी,
0: बिल्कुल
1: मैं कहने वाला
0: बिल्कुल, इशारों में बात हो रही
1: था
0: है। सबक
1: बर

0: जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए,
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ ऐसा कई मरतब ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना, या
0: हाँ।
1: कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, तो कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है,
0: और
1: बारिश
0: सीधे
1: में
0: स्टेज पर जाना पड़ा,
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है।
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है, तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था। ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए
0: अरे
2: शुरुआत के।
0: बाप रे बाप।
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और

0: उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से
1: जी
0: तुलना
1: जी
0: कर रहे हैं।
1: जी आप
0: ये
1: कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है, क्योंकि
0: बिल्कुल, ये बहुत
1: हजार लोग
0: जरूरी
1: सुनने
0: बात
1: के लिए
0: है।
1: आए हैं, तो वो हमारी
0: हाँ
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था,
1: हाँ ऐसा तो बहुत मर्तबा होता है,
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं।
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ कि बोल देते कि अरे यार 2 लाइन गा ही दो
0: हाँ मतलब मूड है कि नहीं।
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद सीखने के बाद,
0: हाँ
1: के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते
0: हाँ
1: रहते
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ है मामला। गोविंद आपके साथ भी होता है?
1: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं RCT गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए, तो
0: हाँ
1: वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है
0: अच्छा
1: क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमे सिंगर छो हाँ अरे वाह मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले ले फोटो, ठीक कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
1: दीजिए यहाँ
0: शॉपिंग
1: पे
0: कर रहे
1: कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाऊँ, फिर
0: हैं।
1: गाया 2 लाइन धीरे से उसके लिए मैंने, क्या
0: देखिए ये होता है
1: करें
0: फैंस
1: किसी को
0: को,
1: नाराज नहीं
0: हाँ
1: कर
0: ये जो
1: सकते। हाँ
0: संगीत के दीवाने उनको खुश
1: नहीं
0: करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
1: सच में सच में,
0: अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूं कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खास तौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूं कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज है, अगर ये पुराने गाने आपने 2.5-3 घंटे सुन लिए, तो अगले 1 साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुंह से सुन भी लिया हूं कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है, और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का, 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे ममहूस एरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है, वो 3 घंटे का रिलैक्स हमको अगले 1 हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
0: अच्छा ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ कुछ कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों, या जबरदस्ती, या शायद वो चीज को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर लाके बिठा दो, तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहां से मैं अपना खत्म करके जाए, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली एंजॉय करते हैं, और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा, तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते
1: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो ही दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते
0: सबसे पहले तो
1: हैं
0: अपना मोबाइल म्यूट
1: मोबाइल
0: रखें,
1: म्यूट रखना
0: वो तो
1: चाहिए
0: जरूरी
1: डेफिनेट
0: है,
1: डेफिनेटली।
0: वो तो जरूरी
1: और
0: है।
1: अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इतनी पता चल जाए, लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए।
0: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
1: एग्जैक्टली
0: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत के लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।

0: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस
1: हाँ
0: गली में तेरा घर ना
1: क्या
0: हो
1: बात
0: बालमा
1: है।
0: हुआ।

0: हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा।
1: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूं जैसा किसी ने नहीं फंसाया
2: हाँ, ऑलरेडी आप कर चुके हो
1: होगा।
0: कब से सोच रहा हूं मैं ये चीज कि अभी
1: अब मैं
0: तक।
1: चाहता हूं कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
2: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना,
1: हाँ

0: हूँ।
1: लो भाई गोविंद।
0: एच
1: हाँ एच है। हाँ
0: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के
1: ये
0: जिसके बाद

0: है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।
0: राम।

0: को
1: और ये आखिरी क से गाइए।
0: कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजान प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता
1: क्या
0: है।
1: प्यारी बात है। इसी
0: वंडरफुल।
1: स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और
0: हाँ
1: उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे
0: अच्छा
1: सुनाई थी।
0: वाह
1: बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना।

0: उन्होंने ये लिखा है।
1: जी
0: और देखिए मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ
1: बहुत
0: आने के
1: बहुत
0: लिए
1: शुक्रिया
0: आपका।
1: यूनुस भाई, आपका भी, विविध
0: बिल्कुल
1: भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का और आपका शुक्रिया अदा
0: आप,
1: करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं,
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा
1: यस
0: और गाया
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: थैंक
1: बहुत शुक्रिया।
0: यू।
1: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

जी हाँ दोस्तों, आप जी का पसंदीदा प्रोग्राम लैके आप जी का दोस्त बलजीत शर्मा आप जी की खिदमत दे विच हाजिर है। दोस्तों आज का विषय होवेगा याद करदियां। जी हाँ, याद करदियां तू रब दी होंद दा सबूत है। जदों तेरी याद आउंदी है तां वक्त बड़ा कीमती लगन लग पैंदा है ते उदास होना चंगा चंगा लगदा है। तेरी याद आउंदियां ही दिल कहिंदा है तू तां इत्थे ही किधरे है अते हुणे आवाज मार के बुला लवेंगी। तेनू उड़ीकदियां थकियां अखां विचों आसां दे सुपने घरां नूं मुड़दे पंछियां दियां डारां वांग लंघदे ने। तेरे ना आउण दी सूरत विच इक महक दी ढूंढ जी रहिंदी है अते इक दीवा तेरी याद दा। दिल दी धुर अंदरली दरगाह विच दिन रात बलदा है।

प्रोग्राम दी होस्ट रहूंगी मैं यानी के ममता अरोड़ा। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना सिलसिला रब ने बनाईया जोड़ियां। मिति 30 जुलाई दिन वीरवार दोपहर 12:30 बजे। एक खास मुलाकात एक प्रेरणादायक सफर सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारों की छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दीआं खास खबरां। लोक सभा ने अज जनतक प्रीख्यावां च अनुचित तरीकियां दी रोकथाम बारे सोध बिल 2024 पास कीता। अज अध्यात्मक अते विद्यक गुरुआं नूं समर्पित गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्म दिवस साल नूं मनाउण लई अज तों सूबा व्यापी संकल्प अभियान की शुरुआत। पंजाब पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों च तुरंत कार्रवाई लई E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा च कई थावां ते अते केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच 30 ते 31 जुलाई नूं भारी तो बहुत भारी मीह पैण बारे येलो ते ओरेंज अलर्ट जारी कीता। अते राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत दे गुलवीर सिंह ने मर्दां दी 10,000 मीटर दौड़ विच चांदी दा तमगा जित के इतिहास रच दित्ता है। ते हुण खबरां विस्थार नाल। लोक सभा ने अज जनतक प्रीख्यावां विच अनुचित तरीकियां दी रोकथाम बारे

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: श्रोतियो नमस्कार, तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा ते नौजवानों दा प्रोग्राम युववाणी। मैं हाँ तुहाडे नाल नूरदीप कौर
4: ते मैं अनमोलप्रीत कौर, साडे दोनों वालों तुहाडा प्रोग्राम विच स्वागत है।
3: हर दिन अपने नाल कुछ नवा लेके आउंदा है, कदे कोई यादगार पल, कदे कोई खास दिहाड़ा ते कदे कोई अजिही गल जो सानू जिंदगी नू इक नवे नजरिए नाल देखना सिखा जांदी है। अज दा दिन भी कुछ अजिहा ही है।
4: बिलकुल, अज दे प्रोग्राम विच असीं अजिहे विषयां बारे गल करांगे जो एक पासे सानू अपनियां कदरां कीमतां नाल जोड़दे ने ते दूजे पासे कुदरत प्रति अपनी जिम्मेवारी दा एहसास भी करवांदे ने, ते इस दे नाल ही अज एक खास शख्सियत नू भी याद करांगे।
3: जी हाँ, अज गल करांगे गुरु पूर्णिमा दी, जो गुरु प्रति श्रद्धा ते सतिकार दा प्रतीक है। इस तो बाद जानांगे इंटरनेशनल टाइगर्स डे बारे, जो सानू बागां दी संभाल ते वातावरण दी महत्ता दी याद दिवांदा है।
4: अज दे दिन ही उद्योगपति JRD टाटा दा भी जन्म दिन, जिन्हां ने भारत दे उद्योगिक विकास विच अहम योगदान पाया। इस दे नाल ही अरुणा आसफ अली दी बरसी भी अज दे ही दिन है।
3: तां फिर शुरू करदे हां अज दा ए सफर गल्लां जानकारी ते सोहणे सोहणे गीतां दे नाल।
4: हांजी नूर, पहलां तुसीं साडे श्रोतियां नूं इक गीत सुना दिओ।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार। तुहाड़ा दोस्त लवलीन सचदेवा ते नाल मेरे साथी
2: रमा शर्मा
1: प्रोग्राम श्याम सुहानी लेके तुहाडी सेवा विच हाजिर हां। श्रोतियो, वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, बड़ा जहीन है समझा के झूठ बोलता है। खुदा जाने अब मेरी जान का क्या होगा, खुदा जाने अब मेरी जान का क्या होगा, वो मेरे सर की कसम खा के झूठ बोलता है, वो मेरे सर की कसम खा के झूठ बोलता है। रमा जी, वेखण में चाहता है कि साढ़े दोस्त साढ़े मित्र बिना गल तो बिना लोड़ पैण तो गल गल ते झूठ बोलते ने, जबकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं होंगी।
2: बिल्कुल सर, ते उस तो पहला मैं जरूर तारीफ करना चाहवांगी, तुसी इन्ना सोहना शेयर

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।

0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
1: जी हाँ श्रोतियो, अज असी कॉल लगाई है मिठू सिंह होरां नूं मानसा तो, आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां। हैलो,
2: हाँ जी सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार मिठू सिंह जी, की हाल चाल ने?
2: ठीक है जी, वधिया, तुसीं दसो?
1: बहुत वधिया, वाहेगुरु दी मेहर, गर्मी दा आनंद माण रहे हो
2: जी।
1: मौसम कैसा है मानसा च?
2: मीदा है नहीं, कणी भी डिगी, बड़ा बुरा हाल होया पिया जी।
1: बड़ा बुरा हाल हो रहा है?
2: हाँ जी, कणी भी नहीं पई जी, बुरा हाल है।
1: चलो किते ना किते, हाँ मेनू लगता है इस गर्मी दे लई किते ना किते असि खुद जिम्मेवार आ ना। दरख्त कटी जा रहे हैं, पेड़ ला नहीं रहे।
2: दरख्त बहुत है जी, साडे तां बहुत है जी।
1: नहीं तुहाडे एरिया च बहुत होणगे, पंजाब दे विच जिहड़े दरख्तां दी गिनती, जिहड़ा जंगलात दे अंडर जिहड़ा एरिया आंदा, बहुत घट आंदा जी।
2: हां जी,
1: इह सानू अपनी फरमाइश दस दियो जी। तुहाडा गल्लां करके मिठू सिंह जी बहुत वधिया लग्या, आकाशवाणी बठिंडा नाल जुड़े रहो। पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

जी हाँ श्रोते, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सदेवा दे नाल। श्रोते हो, अज असी उन्हां श्रोतियां नूं डायल कर रहे हैं आकाशवाणी बठिंडा दे स्टूडियो तो, जिहड़े बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हां दी कॉल नहीं लगती।

0: लगेगा?
1: सर मैं पटियाले तो बोल रही हूँ।
0: अच्छा, पटियाला तो बोल रही हो,
1: हाँ जी हाँ जी सर।
0: ते मौसम कैसा है पटियाला दे विच?
1: मौसम तो बहुत बेकार है,
0: बहुत बेकार है, बेहद ज्यादा गर्मी है ना,
1: बहुत ज्यादा गर्मी, तपक वाली गर्मी।
0: तपिश वाली गर्मी है ना।
1: हाँ जी हाँ जी सर।
0: पर मैनू लगता है कि ये भी जिंदगी दे दो पहलू ने, सर्दी ते गर्मी दोनों रुतां दा आनंद मानना चाहिदा है
1: हाँ
0: ना,
1: जी हाँ जी सर,
0: क्योंकि
1: मैं हर
0: सुख दुख
1: चीज
0: भी
1: में।
0: साडी जिंदगी च लिखे ने ते गर्मी सर्दी भी साडी जिंदगी विच लिखी है।
1: हाँ जी सर,
0: जी
1: हाँ जी हाँ
0: तुसी
1: जी
0: सुने ही होना कि एक शायर ने लिखा है कि जिंदगी की तपिश को महसूस कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को महसूस कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है, अक्सर वो
1: वाह वाह
0: पौधे
1: वाह,
0: मुरझा
1: क्या
0: जाते हैं
1: बोलता
0: जिनकी
1: तुसी,
0: परवरिश छाया में होती है।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा लगा तुसी ये
0: धन्यवाद जी,
1: सुनाता
0: धन्यवाद।
1: सन।
0: तुहानू किवें लग्या जदों आकाशवाणी बठिंडा तो कॉल आई?
1: सानू बहुत बहुत खुशी हुई। मैं कई दिन तो ट्राई कर रही थी
0: आहा।
1: पर फोन लग नहीं रहा थी, तो हुन लग गया तो मैं आई एम बहुत खुश हूँ एंड
0: आ,
1: आई एम वेरी हैप्पी।
0: तोड़े चेहरे दी, तोड़े लफ्जां दी मुस्कुराहट जेड़ी है साडे तक पहुंच रही है, ते साडे श्रोता भी इस गल दा आनंद माण रहे होणगे। अपनी फरमाइश दस दिओ जी, वीर बाला जी, मैनूं बहुत वधिया लगेगा।
1: हाँ जी सर, मेरी फरमाइश है, गुम है किसी के प्यार में, लता
0: आहा।
1: मंगेशकर और किशोर कुमार का गाना है।
0: बड़े प्यारे गीत दी तुसी फरमाइश कीती, ते आओ पेश है तुहाडे रेडियो सेट ते आ रहे हैं तुहाडी फरमाइश ते गीत। तुहाडे नाल गल्लां करके वीर बाला जी बहुत वधिया लग्या, फेर मिलांगे।
1: मैनू भी तुहानू सुन के बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगे।
0: धन्यवाद जी, पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।
2: क्या कहा?

0: जी हाँ श्रोतियो, असी हुण कॉल मिलाई है रामवीर बाला कौशिक नू पटियाला तो। आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: की मेरी गल वीर बाला कौशिक नाल हो रही है?
1: हाँ जी, हाँ जी, सर।
0: केड़ी जगह तो बोल रहे हो? दस दोगे तो वधिया।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस

0: आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी ली अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोतियो, असी कॉल मिलाई है बंता सिंह जी नू जेडे की सूरतिया तो बोल रहे ने, आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। हैलो हैलो हैलो बंता सिंह जी, मैनू लगता है नाराज होके चले गए ने सुरतिया तो। इन्होंने असी इन्हों कॉल मिलाई सी, इन्होंने संदेश भेजा सी। श्रोतियो तुहाडे अगे विनती है कि थोड़ी देर इंतजार करया करो, पेश है इन्हों की फरमाइश से एक गीत।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233। फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोतियो, असी कॉल मिलाई है रणजीत सिंह जी नूं, आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां। हैलो, सत श्री अकाल, नमस्कार रणजीत सिंह जी, प्रोग्राम शाम सुहानी, तुहाडा स्वागत है।
3: सर मैं बस प्रोग्राम च ऐसे जी पहला भी मेरी कॉल ऐसे राही मिली सी प्रोग्राम।
2: अच्छा, आकाशवाणी बठिंडा तो ही तुहानूं स्टूडियो तो कॉल आई सी।
3: जी जी जी जी, मेरा बहुत बारी मैं ट्राई करके देखता सी, मेरा कॉल लगी नहीं, फिर मेरा भी 2 महीने पहला कॉल लगी सी। इस तरह ही
2: फिर तो बड़े खुशकिस्मत हो कि आकाशवाणी बठिंडा तो तुहानू कॉल आंदी है ना, तुहाडा संदेश जिहड़ा पढ़िया जांदा है, इस तो पता लगता कि असीं अपने स्रोतियां दा किन्ना ख्याल रखदे हां, है ना।
3: जी जी सर, फिर मैं ट्राई करता सीगा बहुत बारी विच, कई प्रोग्रामां दे विच ट्राई करन दी कोशिश कीती, मेरा कॉल नहीं लग्या।
2: अच्छा,
3: फिर मैं चलो थोड़ी कहना मतलब ये होंदा थोड़ा जिहा स्रोतियां तुसीं कहने हो भी थोड़ा जिहा रुक के करनी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ महीने इंतजार।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
3: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
3: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
3: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
3: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, हुए मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
3: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि।

0: थी।
1: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
1: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
1: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-5559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

घूमते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ?
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा,
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ।

0: पर बनती नजर आ रही है।
1: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
0: और घुमाओ और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है, वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर्ड। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर
2: जी। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।

0: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
1: हाँ आइए।
0: हाँ आइए, इस तरफ।
1: इधर?
0: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
1: इधर।
0: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
2: ये तो कमाल हो गया, आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉर्डन, इट्स अन अनबिलीवेबल मिरेकल।
0: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: सभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और

0: साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय के अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
5: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज

0: वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।

0: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपये पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used.
4: The government repeatedly clarified that no bullets were fired and that tear gas was used. And if no bullets were fired, then the question of giving an order to fire does not arise at all. Moreover, the authority to issue such an order rests with the magistrate.

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक

0: लोग करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं, रेडियो से कान लगाए। तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म जिद्दी में। हसरत जयपुरी के बोल है और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने।

अभी आपने जिद्दी फिल्म में लता मंगेशकर को सुना और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में साथ दे रहे हैं लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में सुना। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना? किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: भारती पर विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार

आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

0: आए।
1: भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

0: जरा हट के।
1: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग हंसते थे।

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: भी उपजा की जरूर लुम्बा मुझे माध्यम मारा कर देते पापा
1: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खासतौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: बोला बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में

0: तुमने ना देखा।
1: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
2: आज दहिया का याद आवत है,
3: तबीयत नरम है आज।
2: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है। बोलो क्या तकलीफ है?
3: नींद नहीं आती रात भर।
2: नींद नहीं आवत है पर का है? रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है?
3: दुखता उगता नहीं, कसमसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
2: ओ ये तो नवा रोग लगत है। सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
3: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
2: ठहरो, पहले ये बताओ सोवत कैसी हो? चित पट के करवट
3: कैसे? ऐसे
2: बराबर लेटो,
3: भाता है ना ऐसा लेटना।
2: नींद ना आवे तो क्या फायदा।
3: अच्छा ये कैसा?
2: दुई कौड़ी का।
3: तो फिर कैसे?
2: इधर घूमो करवट,
3: फल नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
2: गोबर गणेश कहीं की।
1: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
4: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता?
2: उधर टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
4: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता। तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
2: छोकरी? छोकरी टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
4: यस।
2: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ में है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता?
4: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काय को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट, तुम हमारे पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
2: जाएगा। राइट राइट।
4: मैं सूजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
2: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
4: यू शट अप। सूजन तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला?
2: मैं बोला कि तुम सिस्टर कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है। मैं तुम लोगों छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
6: तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, यू नो है पूरा।

0: के मन यो जाएगी आजादी।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना? किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

पहाड़ कभी एक दिन में नहीं दरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कहीं ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कहीं ही नहीं गई होती।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहां प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस। वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

कभी कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस। हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर गिराया नहीं जा सकता।

जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहाँ गया।

0: ये है विविध भारती।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा है 11:20 दा, ते इस दे नाल ही साडी अज दी सभा समाप्त हुंदी है। सवेरे 5:53 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दिओ आग्या। जय हिंद।